0: global affairs,
1: the hottest entertainment news,
2: and the finest sounds from around the world.
0: No borders, no boundaries, just great conversation.
1: 2 hours of fun, facts, music and culture.
2: Monday to Friday from 8 a.m.
0: Don't miss it.
1: Breakfast Without Borders
2: with Helen, Chris and Ellis.
0: On 103.1 5EBI FM.
1: Starting April 1st. Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
2: Carers SA, supporting 5EBI FM.
3: Español,
4: Nederlands,
5: Arabi,
6: Alapadang,
7: English,
8: Portuguese.
9: 5EBI, a world of difference.
10: You're listening to 5EBI FM, 103.1 EBI World in Digital, broadcasting from our studios at 10 Byron Place from the heart of the city. Time now is 2:30.
11: The MCCSA is welcoming you to our Community Voices radio program, representing our diverse communities at 5EBI FM every Tuesday from 2:30 to 3 p.m.
12: مرحبا اسمي هنا
13: ابو كبا
14: هلو مي فلورين بولتي
15: اخي خبر يا صبوي جينا لانغو ني جودي كوتوكا ام سي سي اس
16: اي بوان ماما شامي ام ام سي سي اس
17: هري اوم نمستي سوبر بھاتم آپ سبھی کے دن صبح منگل میں ہو ईश्वर आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें और आप लोगों के जीवन में जीवन को खुशियों से भर दें। स्वागत है 5EBI 103 FM मल्टी कल्चरल रेडियो हिंदू संगम चैनल से। आप दयावती पांडे के साथ सुन रही हैं। मैं आभारी हूं MCCSA का जो मुझे यह अवसर प्रदान किया। थैंक्स फॉर MCCA फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हमारा ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम इसके बारे में इस समय इस महीना में आप जितना ही दान पुण्य करेंगे जो करेंगे वो सब पुण्य लगता है। तो हम सोच रहे थे कि आज मैं उसी पे चर्चा करूं पुरुषोत्तम मास पे, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि यह मास स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का ही स्वरूप है। इस मल मास को स्वयं भगवान ने अपना लोक मंगलकारी नाम प्रदान करके पुरुषोत्तम मास बनाकर कलिकाल में लोक मंगल हेतु प्रतिष्ठित किया है। इस पावन मास में किया गया कोई भी सदकर्म निश्चित ही अक्षय पुण्य फल प्रदायक, और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस मास की एक विशेषता यह भी है कि इसमें किया गया न्यून पुण्य यानी कम से कम भी जो काम करेंगे कर्म अच्छा करेंगे, जैसे दान देना है, गरीबों को खिलाना है, और पैसा फल फूल जो भी है व्रत रहें, गंगा स्नान करें, तो अनंत गुना अधिक लाभ फलदायक होता है। इसलिए इस मास को अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मास में एक जो हमारा एक एक दिन घटता है एक एक पल उसको जोड़ करके एक महीना हमें बढ़ जाता है। यद किंचित कुरुते धर्म पुरुषोत्तम मास के तद क्षयम भवित सर्वम न अत्र कार्या विचारणा। इस पर्यंत इस पावन अवधि में यथा सामर्थ्य किसी श्रेष्ठ नियम का निष्ठापूर्वक पालन करके इस सौभाग्यशाली अवसर का लाभ लेकर अपने स्वयं के कल्याण के साथ साथ अपने पितरों और पूर्वजों के सद्गति मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। इस पावन पुरुषोत्तम मास में प्रभु का नाम जप कीर्तन सुमिरन दान गंगा स्नान और दीपदान के साथ साथ श्रीमद्भगवत रामचरितमानस श्रीमद्भगवत गीता सहित अन्य सद्ग्रंथों का यथासंभव पाठ करते हुए

इस समय को सफल करते हुए अपने जीवन को आप लोग सार्थक कर सकते हैं। तो ये मलमास का महत्व हमने बताया आप लोगों को, और अभी आप गणेश और स्तुति सुन लीजिए।

বা সরি ফার্মে বোল দিয়া থাকে স্তুতি বাকি এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শ্লোক শুনে হ্যাঁ আপল আর মুখে লগ রা আপল আচ্ছা লগাও কিন্তু মলমাস হিসেবে তো অভি বতা রে থি কি জিতনা ভি পূজা পাঠ ওর গীতা কা রামায়ণ কা পাঠ করে ও আচ্ছা হ্যাঁ তো আবি হম থাড়ি সা আজ মানে বচ্চো পড়াই থি তো মুখে লগ রা কি আপল বতায় কি বিদ্যা কাজ ক্যা মহত্ব হ্যাঁ আলস্য কুতো বিদ্যা অবিদস্য কুতো ধনম অধনস্য কতো ধনম অধনস্য কুতো মিত্রম মিত্রস্য কুতঃ সুখম ইসকা মিনিং হ্যাঁ অর্থ হর্থাৎ আলসি ইনসান কো বিদ্যা কহা ওর বিদ্যাবিহীন কো ধন কহা ওর ধনহীন কো মিত্র কহা মিত্রবিহীন কো সুখ কহা অর্থাৎ জীবন মে ইনসান কো কুছ প্রাপ্ত করনা হয় তো সবসে পহলে আলস্য কো আলস্য ওয়ালি প্রবৃত্তি কো ত্যাগ করনা চাহিয়ে यह एक बेहद प्रेरणादायक श्लोक है जो कि आलसी के नुकसान और जीवन में विद्या ज्ञान के महत्व को बताता है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊं कि आलस्य नहीं करना चाहिए, जितना भी हो ज्ञान का वर्धन करना चाहिए। इंग्लिश में इसका मीनिंग है दैट इज वेयर इज नॉलेज फॉर अ लेजी पर्सन वेयर इज द वेल्थ फॉर वन विदाउट नॉलेज इग्नोरेंट वेयर आर फ्रेंड्स फॉर द destitute one without wealth where is happiness for one without friends that is to say if a person wants to achieve something in life they must first give up the nature of laziness vidya dadati vinayam vinyad yati patratam patratvat dhanmapnoti ধনম প্রাপ্নোতি ধনাত ধর্ম ততঃ সুখম বিদ্যা বিনয় দেতি হ্যায় বিনয় সে পাত্রতা আতি হ্যায় পাত্রতা সে ধন আতা হ্যায় ওর ধন সে ধর্ম ওর ধর্ম সে সুখ প্রাপ্ত হতা হ্যায় নালেজ মেক্স ওয়ান হাম্বল হিউমিলিটি বিগেটস ওয়ার্দিনেস ক্রিয়েট ওয়েলথ অ্যান্ড Enrichment leads to right conduct. Right conduct brings contentment. ये मैं इस श्लोक मेरा था कि हम आप लोगों को बताएं और कि विद्या का महत्व कितना है। अगर आप विद्या प्राप्त करते हैं तो आप सब कुछ मिलेगा और आलस्य को त्यागना चाहिए। तो मेरा मन था कि आप लोगों को इस श्लोक मैं सुनाऊंगी। ন দত্তে কস্যাচিত্যা পাপম ন চৈব সুকৃতম বিভু অজ্ঞানেনাবৃতম জ্ঞানম তেন মুহান্তি জন্ম জন্তুবহ পরমেশ্বর ন তো কিসি কে পাপ কো গ্রহণ করতা হ্যায় অর নহি পুণ্য কো জীবো কা জ্ঞান অজ্ঞান সে ঢকা হুয়া হ্যায় ইসি কারণ বে মোহ মে পড়ে রহতে হ্যায় आलस्य को हमेशा छोड़ करके ही करना चाहिए तब आपको सब कुछ मिल सकता है अर्थात आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं मुझे अच्छा लगा था कि मैं आपको बताऊंगी तो आपको पढ़ के सुना दी। तो अभी हम फिर पुरुषोत्तम मास के बारे में बात करते हैं कि उसका क्या महत्व है या धर्म के सर्वोत्तम लक्षण क्या है। पहले हम उस पर चर्चा करते हैं कि जिससे कोई भी पुरुष धर्म के इन लक्षणों को अपने जीवन में धारण कर ले तो इस दुख रूप संसार सागर में पुनः लौटकर नहीं आएगा। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच मिंद्रिया निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दस कम धर्म लक्षणम धर्म धैर्य क्षमा मन का निग्रह चोरी का ना करना बाहर भीतर की शुद्धि इंद्रियों का संयम सात्विक बुद्धि अध्यात्म विद्या यथार्थ भाषण और क्रोध का ना करना धर्म के 10 लक्षण हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा अहिंसा सत्य भाषण चोरी न करना ब्रह्मचर्य का पालन और भोग सामग्रियों का संग्रह न करना ये 5 प्रकार के यम हैं। शौच संतोष
तपः स्वाध्याय स्वप्राणी धानानि नियमः। बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करना, ये पांच प्रकार के नियम हैं। इन सब का निष्काम भाव से पालन करना ही सच्चा धर्माचरण है। यही धर्म के सर्वोत्तम लक्षण है। इन्हीं से परम पद की प्राप्ति होती है। अतः जो सच्चे हृदय से मनुष्य मात्र की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे उपर्युक्त लक्षणों से युक्त धर्म को ही उन्नति का परम साधन समझकर स्वयं उसका आचरण करें और अपने दृष्टांत तथा युक्ति के द्वारा इस धर्म का महत्व बतलाकर मनुष्य मात्र के हृदय में इसके आचरण की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर दें। वास्तव में यही सच्चा धर्म प्रचार है और इसी से लौकिक अभ्युदय के साथ साथ देश काल की अवधि से अतीत मुक्ति रूप परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। इस स्थिति को प्राप्त करके पुरुष दुख रूप संसार सागर में पुनः लौट कर नहीं आता। तो ये पूरा उसका हमारा था कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आप लोगों को ये सब बिल्कुल सत्य भाषण करिए, सत्य बोलिए और कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, कोई ऐसा काम ना करेंगे। तो इसका पुरुषोत्तम मास की महिमा का मैं अभी थोड़ा सा बात करती हूँ आपको। पुरुषोत्तम मास स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का ही स्वरूप है। इस मास को स्वयं भगवान ने अपना लोक मंगलकारी प्रदान किया है। इस पर्यंत इस पावन अवधि में यथा सामर्थ्य किसी श्रेष्ठ नियम का निष्काम पूर्वक पालन करके सौभाग्यशाली अवसर का लाभ लेकर अपने स्वयं के कल्याण के साथ साथ अपने पितरों और पूजों की सदगति मार्ग में प्रशस्त कर सकते हैं। तो आपको इस अपना जीवन का सबसे अच्छा ये महीना है और जितना भी आप दान पुण्य कर सकती हैं और अपने जो चारों तरफ के हमारे नियम हैं उसको आप पालन कर सकती हैं, तो अपने जीवन में जो भी आपको इच्छा होगी पूर्ति होती है, शांति होता है घर में सबसे ज़्यादा। कि आपके घर में मन में शांति है तो घर में शांति है। जीवन की अनिश्चितता, बुरे समय को याद करके दुखी होने की अपेक्षा अच्छे समय को याद करके खुश होना कई गुना अच्छा है। जीवन की पटरी रेल की तरह समानांतर नहीं चलती है, अपितु सड़क की तरह कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं चौड़ी कहीं संकीर्ण, कहीं समतल तो कहीं उबड़ खाबड़ होती है। यहाँ कभी कुछ अच्छा तो कभी कुछ बुरा अपने जीवन में घटित होता है। समय गलत होता है लेकिन समझ गलत नहीं होनी चाहिए। जीवन के जिस पहलू पर भी आपकी दृष्टि रहेगी उसी आकार में जीवन अपने आप को ढालने लगेगा। आप अपनी खुशियों पर दृष्टि रखें तो आपको दुखों की विस्मृति कराकर आपके मन को प्रसन्नता से भर देगा। और यदि आपकी दृष्टि बुरे समय पर रही तो अभाव और तृप्ति का आभास कराकर आपके मन को दुखी कर देगा। दुख होते हुए भी मन से अपने अच्छे समय को याद करके खुश रहना ही जीवन की प्रसन्नता है। तो अभी आप थोड़ा सा श्लोक करेंगे, आप कथा सुन रही हैं तो कथा सुन के आपका जीव हो गया होगा, तो भगवान को स्मरण करते हैं हम लोग थोड़ा सा।

अभी हम मलमास के बारे में कह रहे थे जो पुरुषोत्तम मलमास चल रहा है, लेकिन हम पहले भी मेरा विचार है कि पहले स्वयं को समझें और स्वयं को बदलें। हम दूसरे को नहीं कर सकते, हमारे मनुष्य योनि में आकर के हम दूसरे की बातें देखते हैं, अपने बारे में नहीं करते। तो हम अपने आप को ही समझें और स्वयं को बदलें, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्वयं में बदलाव के बिना हमारा जीवन कभी नहीं बदल सकता। हमारे जीवन में अशांति, अप्रसन्नता अथवा दुखों का कारण कोई और नहीं अपितु हम स्वयं हैं। कई बार हमारे द्वारा अपनी अशांति, अपने दुखों अथवा अपने द्वंद्वों का कारण दूसरों को मान लिया जाता है। हम जीवन में सुखी हो तो होना चाहते हैं, पर दूसरों को बदलकर, स्वयं को बदलकर नहीं। हम अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरों को समझाने में करते हैं, पर स्वयं को नहीं समझा पाते। लोग हमें समझें अथवा ना समझें, पर हमारी समझ में अपना स्वयं का स्वभाव अवश्य आना चाहिए। दूसरे लोग हमें नहीं समझ रहे हैं, इस यह चिंता का विषय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पर हम स्वयं भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह अवश्य विचारणीय विषय है। स्वयं को जानने का प्रयास करें। जो स्वयं को जान लेता है वो अपने जीवन में घटित हो रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी स्वयं खोज लेता है। स्वयं को समझे और स्वयं को बदले, यही जीवन की प्रसन्नता का आधार है। तो आज हम सोच रहे थे कि सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, कभी लोग बहुत खुशी होते हैं, तो हम थोड़ी सी इस पर भी चर्चा करें और आप लोगों को हम बताएं। तभी हम फिर चलते हैं, थोड़ा सा हम बीच में चेंज कर दिए थे, अभी हम फिर अमावस्या के बारे में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे इसकी कथा कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ। ऐसा हमारे पौराणिक कथा है और हमें ये मैं नहीं कह सकती कि सही है, जो हम पढ़े वो ही बता सकते हैं कि मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या को कर्म के आधार पर फल देने वाले देवता शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था। शनिदेव महाराज की जयंती पर शनिदेव के निमित्त उनके बीज मंत्र, पूजा पाठ, ध्यान और दान, मतलब कि ज्येष्ठ महीने की बातें हैं कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को, अभी अमावस्या गया है ना 2-3 दिन पहले, उसी से हमारा ये पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है। तो ये निमित्त बीज मंत्र, पूजा पाठ, ध्यान और दान आदि करने का कई गुणा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। भगवान शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा मिलती है कि राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा का परेशान रहती थी। वो सूर्य की अग्नि को कम करना चाहती थी। और कुछ समय बाद संज्ञा और सूर्य के 3 संतान उत्पन्न हुए, विवश्वत, मनु और यमराज और यमुना। संज्ञा इसके बाद भी सूर्य के तेज को कम करने का उपाय सोचती रहती थी, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी हम शक्ल को बनाया और मान सवर्णा रखा, और संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी सवर्णा को सौंप दी और खुद अपने पिता के घर चली गई। उनके पिता ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वो एक जंगल में जाकर घोड़ी का रूप लेकर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव को कभी सवर्णा पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो संज्ञा की छाया थी। सवर्णा को छाया के रूप में कारण सूर्यदेव तेज से कभी भी परेशानी नहीं हुई। तो ये हम शनिदेव का अमावस्या की कथा के बारे में बता रहे थे, वो बहुत बड़ी कथा है। सूर्यदेव सवर्णा के मिलन से मनु और शनिदेव भद्रा का जन्म हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव के गुस्से की एक कथा है कि उनकी माता छाया पर सूर्यदेव के शक किया कि शनि वाले काले हैं, इस कारण उनके पुत्र नहीं है हो सकते। इस बात के नाराज होकर शनि से गुस्से से सूर्य को देखा, इस कारण सूर्य भी काले हो गए और उनकी गलती एहसास होने पर सूर्य ने माफी मांगी और फिर उनका असली रूप प्राप्त किया। तो ये हमने थोड़ी सी बीच में शनि भगवान की कथा कही, क्योंकि अमावस्या अभी चला गया था और उसके जेठ का महीना चल रहा है। तो हम फिर पुरुषोत्तम मास की कथा पे आते हैं। तो हम बीच में थोड़ी सा बीच में डाल दी शनि भगवान का, तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अभी हम शुरू करते हैं।
एक समय की बात है कि भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, महान ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूजी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूजी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूजी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो और कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की अब विनती सुनकर सूजी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूजी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा और काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं, पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूजी वहां पहुंचे और गंगा के किनारे दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्र थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्या कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था तो कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई महान दिव्य घटना घटी महर्षि, तो कोई फलहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय यहाँ पर एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। सूजी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे तो वहां भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्री मद भगवत गीता अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ और उस दिव्य दृश्य को देखकर और वहां के पुण्य वातावरण का अद्भुत अनुभव कर मैं वहां आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूं। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। ऋषियों ने कहा, हे सूजी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो और मन को शांति दे और जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो।

0: तो अभी हम हमारा ये कहानी था, मैं थोड़ा सा इसको सुनाती हूँ उसके बाद हम बंद करते हैं क्योंकि अब समय ज़्यादा हो गया तो हम पूरी कहानी नहीं सुना पाएंगे। तो आप लोग इसको, आप लोगों को भी मालूम ही होगा, तो आप लोगों से बातें करते करते समय समाप्त हो गया, पूरी कहानी भी नहीं हुई। कहानी बहुत बड़ी है, कई अध्याय में है, तो हमने एक अध्याय आपको किया। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहूँगी और सब आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और मैं हूँ दयावती पांडे फ्रॉम 5VVI 103 मल्टी कल्चरल रेडियो हिंदू संगम से। अभी मेरा प्रोग्राम समाप्त होने जा रहा है। हाँ, आप लोग अपने बच्चों को हिंदी संस्कृत गुजराती पढ़ाना बोलना सिखाने के लिए VHP के वेबसाइट vhpsa.org.au पर जाकर रजिस्टर कर सकती हैं और निःशुल्क शिक्षा है। अगेन मेनी मेनी थैंक्स फॉर एम मल्टी कल्चरल MCCSA फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगले महीने हम इसी मंगलवार को और इसी टाइम 2:30 पर फिर आपसे मिलती हूँ। हरिओम, जय श्री गणेश। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को मातृभाषा अवश्य सिखाएं, मातृभाषा अपनी संस्कृत से जुड़े रहने और अपने परिवार के बड़े लोगों से बातचीत करने के लिए ज़रूर सिखाएं। तो ये चलिए, हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास का नमस्कार। हरिओम, जय श्री कृष्ण।
1: What doctor's appointment does mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1-800-422-737.
2: Carers SA, supporting 5EBI FM.
3: Hi there, listeners. Get ready to wake up to the world with us.
2: Join Helen, Chris and Ellis on Breakfast Without Borders.
4: On 103.1 5EBI FM, starting Wednesday, April 1st.
3: We're bringing you the latest on global affairs,
4: the hottest entertainment news,
2: and the finest sounds from around the world.
3: No borders, no boundaries, just great conversation.
4: 2 hours of fun, facts, music and culture.
2: Monday to Friday from 8 a.m.
3: Don't miss it.
4: Breakfast Without Borders
2: with Helen, Chris and Ellis
3: on 103.1 5EBI FM.
4: Starting April 1st.